0: उसकी ये बात अभी भी याद है कि उसने बोला था कि यार मेरी अम्मी को बोलना कि वो आपका बेटा मर गया है, अब उसका आप इंतजार ना कीजिएगा और मुझे यहीं पे छोड़ दो, आप जाओ मेरे लिए दुआ करो।
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
0: तो जब ये वीडियोस मैंने देखी थी, मैं खुद रोने लग गया था कि यार ये क्या है। फिर मैं एक दफा फिर से मेरा जुनून ताजा हुआ, फिर से मैंने इस चीज को और ज्यादा मजबूत तरीके से एक्सपोज करना शुरू किया।
1: Find out about Ali's story. Info Migrants, reliable news for migrants wherever they may be.
2: This is DW News and these are our top stories. President Donald Trump has accused China of unprecedented meddling in US elections and the race for the White House in 2020. In a televised address to the nation, Trump also said US officials covered up the scale of the interference. He announced the immediate declassification of intelligence on elections, referring to shock.

0: correspondent Nina Haase. Thanks, Nina.
1: Allah पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इंशाल्लाह मेरा भाई वापस आएगा.
2: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
1: उन्हें बस ऐसा सोचा कि मेरे घर के हालात ठीक हो जाए, ऐसा सोचता है. तो मैं उन्हें क्या विषय कि मैं घर के हालात ठीक करने उनके घर रह के भी हो सकते हैं, तो आप उठे रास्ते ना जा. तो नहीं सी मनता किसी की गल.
2: Find out about Rubina's story. Info Migrants, reliable news for migrants, wherever they may be.
3: Российская агрессия, ситуация в Украине. Мы будем в прямом эфире.